0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जिया बिंदास।
2: चांदनी

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
3: अरमान मलिक,
4: मैं नंबर वन
3: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: रेडियो
5: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। रेडियो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।
4: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।
5: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
6: रेडियो ऑलिव, नंबर वन।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
3: Where the world comes to shop.
4: You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
5: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास. आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
3: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
2: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
3: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
2: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट।
4: Where the world comes to shop.
5: Radio Olive Pie.
6: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
5: Fresh song of the hour.
6: Ye gana.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
3: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
4: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
5: लुलु, where the world comes to shop.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। You are listening to Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर. नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा, कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने। जनाब खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अगला गाना तुसी सुनोगे पंजाब दे तड़कीले ते पड़कीले नौजवान गबरू का तक दी आवाज. इस गाने की फरमाइश की है लुधियाने तो सुखविंदर सिंह, हुशियारपुर तो बेबी बेटी ते अजरौर तो मिंटू जी ने. पेश है बंब गाना.

देखिए जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि होठ खुद ही सिल जाते हैं तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी कब से जो है कोशिश कर रही है कि ये लड़की जो है बाकी लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने थोड़ा सा चुप बैठे, इसके होठ सिल जाया करें, सिर्फ हाय हेलो जो है, ग्रीटिंग्स जो है ये दे, लेकिन इसे तो उल्टे जवाब देने होते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, होता है ऐसा। हाँ जी, वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यार, मैंने ये वाली बात इसीलिए मेंशन करी क्योंकि कल जो है वीकेंड था, फ्राइडे था, सब अपने अपने घर पे होते हैं एंड जो भी अपने घर से, अपने शहर से जो है, अपनी कंट्री से दूर है यहाँ पे, तो फ्राइडे को जो है थोड़ा सा वक्त मिल जाता है अपने घर पर बात करने के लिए। एंड मैं जो है करने की कोशिश करती हूँ कि अपने घर पे सबसे अच्छे से बात कर लूँ, ताकि सबको जो है ना ऐसे ना फील हो कि मैं दूर हूँ और मैं उन्हें भूल गई हूँ। तो मैं बात करने की कोशिश करती हूँ एंड जब भी मैं किसी ऐसे रिश्तेदार के बारे में सुनती हूँ जो मुझे नहीं पसंद है थोड़े से, तो जो है फिर बात जो है ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फिर मम्मी बोलती है अच्छा हुआ तुम वहाँ चली गई, क्योंकि अगर यहाँ रहती तो तुम उल्टा जवाब दे देती और फिर हमारा नाम ख़राब हो जाता है, हमारा रिलेशन तुम्हारे वजह से ख़राब हो जाते हैं। क्यों यार, क्यों हमारे मम्मी पापाओं को जो है आदत है इतना सझो संझो के रिश्तों को रखने की, एंड वहीं हमारी जनरेशन थोड़ी सी जो है डिटैच सी हो गई है। पता नहीं, कभी कभी अच्छा भी लगता है मुझे कि डिटैच हो गए, हमें उतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है सबसे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि यार ऐसे फिर जी कर क्या जिए। देखो ठीक है, ऐसी इमोशनल बातें जो है वो हम करते रहेंगे। आज जो है शो में बहुत सारी चटपटी चीज़ें जो है आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ, बॉलीवुड की गॉसिप है एंड आपके फैशन से जुड़ी हुई बातें हैं, मूवीज रिकमेंडेशन है, बहुत कुछ है। बस आपको स्टे ट्यून्ड रहना है यहीं पे 106.3 रेडियो ऑलिव पर। फिलहाल जो है बंजारे डुओ का मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक जो है बरसात आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ओलिव, बोलो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट

0: ऑफकोर्स जी, वादा तो बिल्कुल आपसे करके रखा है हमने कि आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट जो है वो देते रहेंगे, एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होने देंगे। जी आपकी कशिश आ चुकी है लेकर आपके लिए, लाइफ मस्त है शो 106.3 रेडियो अलव पर। अब देखिए यार, इस मौसम के मामले को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और मैथ्स, थोड़ी और साइंस जो है वो मुझे पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आए दिन मेरी इंस्टाग्राम पे जो है मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो दिखते रहते हैं। कोई ना कोई पोस्ट कर रहा होता है कि ये वाला स्टार दिख गया, वो वाला स्टार दिख गया, अब फाइनली गर्मी चली जाएगी एंड मैं उस स्टार का वेट कर रही हूँ। ये मेरा जो 5-star एसी है ये जो है काम करना बंद कर गया है, लेकिन इनके जो स्टार्स हैं वो अभी तक काम करना अपना शुरू नहीं कर पाए हैं। सो मुझे तो देखिए इस मौसम से काफी होप थी, लेकिन आज फिर से हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस पे जाने वाला है। मतलब अच्छा परफॉर्म करता है एकदम 39 डिग्री 38 डिग्री पे हाईएस्ट टेम्परेचर आता है एंड फिर पता नहीं इसको क्या हो जाता है, इसको ऐसा लगता है कि यार इन लोगों, ये लोग डिजर्व ही नहीं करते, और वापस 40 प्लस में चला जाता है। सो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आज का लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो थोड़ी सी होप दे रहा है कि हाँ हो सकता है कि अब जो मौसम है वो ज्यादा प्लीजेंट हो जाए। सो 29 डिग्री सेल्सियस आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है एंड इस वक्त का टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस है। यानी आज के हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में उतना ही डिफरेंस है जितना सैफ अली खान के सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे में है। सो इतना बड़ा डिफरेंस जो है टेम्परेचर में है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आप एंटरटेन जरूर होने वाले हो। सो इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए एंड हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो कह दो यार। आई नो वीकेंड वाले मोड पर हो आप, लेकिन अगर आप प्यार से दो शब्द लिख दोगे मेरे लिए आकर चैट पे तो क्या हो जाएगा, है ना। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से अपना फोन उठाओ, ऑडियो नोट भेज दो, मैसेज कर दो एंड यार अमेजिंग वाले गाने जो है मैं आपको सुना ही रही हूँ। सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये भी एंजॉय करते रहो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

ऑफ कोर्स जी, देखिए इस वक्त तो सावन बेरी ही हो रखा है क्योंकि कोई भी मौसम में मेजर चेंज देखने को मिल नहीं रहा है। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अभी से मैं बता देती हूँ, सो अगर आप किसी को भी ये बताना चाहते हैं कि यार मैं ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सो आप उन्हें बोल दीजिए कि जल्दी से 106.3 रेडियो ऑलिव जो है वो ट्यून इन कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, मुझ पर थोड़ा सा यकीन कीजिए, भरोसा जो है रखिए। उन्हें बस बोल दीजिए कि आपके लिए जो है एक गाना हमने डेडिकेट किया है रेडियो पे, सो बस उन्हें बोल दो कि अभी रेडियो ट्यून इन कर ले, जो अगला गाना है वो पक्का पक्का पक्का उन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या किसी को अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो, सो अगला गाना परफेक्ट होने वाला है। सो जल्दी से सबसे पहले तो उन लोगों को मैसेज कर दो, एंड उसके बाद फिर आप मुझे भी हाई हेलो मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैसेजेस से याद आया, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि यार हाई हेलो गुड मॉर्निंग कुछ तो कर दो यार, ऐसे ग्रीटिंग्स जो है होनी चाहिए। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यारी प्यारी चीज़ें जो है वो भेजी। अब्रार जी ने सबसे पहले गुड मॉर्निंग वाली फोटो भेजी है, एंड थैंक यू सो मच। एंड मुझे चिराग जी ने जो है एक चाय के कप की फोटो भेजी है, सो मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो यू नो 39 डिग्री में भी बाहर खड़े होकर चाय पी रहे होते हैं, बिकॉज वो मेरे जैसे होते हैं। सो नाइस चिराग। इसके बाद मुझे मुझे समीर जी ने जो है वो भेजा है, हाय कशिश गुड मॉर्निंग, सो थैंक यू समीर जी, हेलो। एंड आप लोग भी अगर चाहें तो मुझे हाय हेलो और गुड मॉर्निंग जो है वो भेज सकते हैं 3311063 पर। बाकी अगला गाना जो है वो आपके लव्ड वंस को डेडिकेट करते हुए जो है हम आपको सुनाना चाहते हैं, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ऐश किंग की आवाज़ में बॉडीगार्ड मूवी का ये ट्रैक इन्जॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में आकर हम जो है एक बहुत ही फन इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: बिल्कुल आपकी दिलरुबा जो है वो गुमशुदा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठी है आपको एंटरटेन करने के लिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड यार देखिए, लाइफ मस्त है शो जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ विद अ पिंच ऑफ एंटरटेनमेंट। सो आज इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते मेरी नजरों के सामने एक ऐसी खबर आई जो मुझे ऐसा लगा कि यार ये आपको बतानी चाहिए। सो एक लड़का और एक लड़की जो है अपनी फर्स्ट डेट पर गए, मतलब उनकी जो है शादी फिक्स होने वाली थी बेसिकली, तो उनकी पहली मुलाकात थी। एंड फर्स्ट मुलाकात पे ही लड़के ने लड़की से क्या पूछा होगा उसने, मतलब आप जो है जनरली क्या पूछते हो, आपका फेवरेट कलर क्या है, आपको कौन सी क्विजीन खाना पसंद है, या आप चाय पर्सन हो, कॉफी पर्सन हो, बीच पर्सन हो, या माउंटेन पर्सन हो। लेकिन नहीं, इस बंदे ने क्या पूछा पता है, कि आप जो है सेविंग्स करते हो या नहीं करते हो, आप जो है सैलरी का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करते हो, या मतलब ऐसे फाइनेंशियल क्वेश्चंस जो कि मतलब इंटरनेट जो है वो अब दो भागों में बट गया है कि यार ये क्या बात हुई, फर्स्ट डेट पे ऐसे सवाल कौन पूछता है। एंड वहीं पर एक साइड है इंटरनेट का जो ये भी कह रहा है कि यार ये सब बात नहीं तो पहले ही डेट पे करनी चाहिए, वरना उसके बाद आगे बहुत दिक्कत आती है। आपको क्या लगता है, 1063 पर आकर मुझे बता दो। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आपकी रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर, ये गाना

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
2: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: सा मन भागे तेरे पीछे, बावरा सा मन, बावरा सा मन।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: Hi guys, this is Vani Bhanushali.
3: Hey, this is Liana De Cruz.
4: This is me, Ritik Roshan.
5: Hi, I'm Alia Bhatt.
6: Hi, main hu Vivekanand Oberoi and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: यार ऐसे कूल और क्वर्की गाने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड ने बनाने जो है वो बंद ही कर दिए हैं। इसके बाद जो है ऐसा क्यूट गाना जिसमें ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये तो अब आ ही नहीं रहे। एंड जी वेलकम 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो जितने भी मेरी तरह जो है शॉपिंग पगलूज हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी न्यूज़ मैं लेकर आ गई हूँ। सो दोहा फेस्टिव मार्केट 2026 जो है वो आने वाला है, रजिस्ट्रेशन जो है वो उसके लिए शुरू हो गए। अब यहाँ पर क्या है, आपको हैंडमेड आइटम्स जितने हो सकते हैं वो मिलेंगे, चार्मिंग स्मॉल बिजनेसेस जो है वो आपको देखने मिलेंगे, एंड फुल ऑन एक फेस्टिव वाइब जो है वो मिलेगी आपको। ये 14th नवंबर से जो है वो स्टार्ट होने वाला है दोहा गल्फ क्लब में, एंड इसमें जो है टिकट्स भी हैं, मतलब 25 रियाल जो है वो आपको अडल्ट के लिए देना होगा, एंड 12 साल से छोटे वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है फ्री में एंटर कर सकते हैं। लेकिन शॉपिंग का एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही मेजर जो है अट्रैक्शन ही बनने वाला है। सो जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करना, और बाकी अगर ऐसी और यू नो शॉपिंग फेस्ट की या ऐसी न्यू जगहों की आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो जो है टोटल शॉपिंग पगलू हूँ। और कल मैंने क्या क्या जो है शॉप किया और कहाँ गई थी मैं, क्या कैसे मैंने अपना वीकेंड जो है वो स्पेंड किया आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल हाउसफुल 4 का एक बहुत ही यू नो क्वर्की सा ट्रैक आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इस कूल सॉन्ग ऑफ द आवर को एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: बात है सर, क्या बात, ये बात है। awesome.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफ

0: जिस तरीके से टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है आगे बढ़ती जा रही है ना, मुझे कभी कभी डर लगता है कि यार इतना आगे पहुंच गई कि मैं पीछे रह गई तो।
1: आपकी कशिश।
0: बता रही हूँ ऐसा क्यों बोल रही हूँ। हाँ जी, आपकी कोशिश हूँ मैं, लाइफ मस्त शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, टेक्नोलॉजी जो है पहले हमारी जरूरतों को पूरा कर रही थी, लेकिन अब जरूरतों से बढ़कर जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ की, उन्हें भी सॉल्व कर रही है। सो अक्सर क्या होता है कि आप जो है, आपके पेरेंट्स के साथ भी ये प्रॉब्लम रही होगी, अब आप भी शादी के बाद ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगी कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ जो है सोने के लिए जाते हो, तो उसके बाद एक हवा का झोंका आता है और फिर आपके पार्टनर जो है वो स्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी खर्राटे जो है वो शुरू होने हो जाते हैं एकदम फर्राटे से। तो देखो, इसके लिए जो है एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब जो है ऐसा बेड डिजाइन हो गया है कि द मिनट आपका पार्टनर जो है वो स्नोर करना शुरू करता है, यानी खर्राटे लेना शुरू करता है, बेड अपने आप दूर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ताकि दूसरे पार्टनर की नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एंड ये जो है मैंने थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही पता लगाया है कि जो कपल जो है वो आराम से सोते हैं, यानी अपनी नींद कंप्लीट करते हैं, उनके बीच में लड़ाई जो है वो कम होती है। अब जिस हिसाब से मेरी नींद हमेशा आधी रह जाती है और मैं दुनिया भर से लड़ती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सही बात है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है ना, तो फिर आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, सबकी बात अच्छी लगती है, मैनेजर की डांट भी अच्छी लगती है। सो इसी बात के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यार ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेंट चाहिए। जैसे ये एक इन्वेंशन हुआ है कि जैसे ही आपका पार्टनर खर्राटे मारना शुरू करे, बेड अपने आप अलग अलग हो जाए, दूर दूर हो जाए। सो और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है, 3311063 पर मुझे बताइए, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन शायद आपका मैसेज उन लोगों तक पहुंच जाए जो ये कर सकते हैं, जो इन्वेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो है ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए।

0: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
1: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
2: दृश्यम दी कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
2: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
2: Overseas release by Zee Studios.

सचेत और परंपरा की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश। हाँ जी, शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, कल ना मैं शॉपिंग गई थी, एंड वहाँ शॉपिंग पर जब मैं गई तो मैंने देखा हर स्टोर में कुछ ऐसे शेड्स हैं, कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। सबसे पहले तो बर्गंडी, ऑफकोर्स, क्योंकि जो है आईफोन ने बर्गंडी का ऐसा ट्रेंड सेट किया है कि अब हर जगह पे आपको एक ना एक आइल जो है पूरी की पूरी बर्गंडी कलर की ज़रूर दिखती है। एंड दूसरा कलर था आइस ब्लू कलर का, एंड आज मैंने भी उसी कलर का आउटफिट पहना है, बिकॉज मुझे दिखाई दिया कि यार ये कितना ज़्यादा ट्रेंड में है। एंड एक जगह जहाँ पर मैंने आइस ब्लू को परफेक्टली देखा है, ब्लू को परफेक्टली देखा है, वो है लव एंड वॉर का जो पोस्टर है, जिसमें रणबीर कपूर, ओह माय गॉड, कितने ज्यादा अमेजिंग दिख रहे हैं, एंड वो ब्लू कलर की कार कितनी ज्यादा ऑसम लग रही है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसे ये पोस्टर इतना पसंद आया है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी जो है वायरल हो रहा है, जहां पर एक लड़की है, उसने बहुत बड़ा सा पोस्टर लव एंड वॉर मूवी का जो है अपने रूम में लगा रखा है, एंड उसका भाई जो है वो इस वजह से उससे लड़ रहा है कि यार ये लड़की कुछ भी कर रही है, रणबीर कपूर का पोस्टर इसने लगा दिया। एंड सच में अगर मैं कास्टिंग की बात करूँ, सो अप्रोप्रिएट कास्टिंग करी गई है, मतलब एक पोस्टर हमें जो है इस बात को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार ये मूवी तो अमेजिंग होगी, ये मूवी तो देखनी पड़ेगी। एंड सब जो है रणबीर कपूर के इस मूवी के पोस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आलिया भट्ट के पोस्टर के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो जो रेट्रो फील होती है, जो ओजी बॉलीवुड की फील है, वो आलिया भट्ट के इस पोस्टर से जो है वो नजर आ रही है। एंड ऑफकोर्स रणबीर आलिया जो फैंस है वो इन दोनों को हमेशा से साथ में देखना चाहते हैं, एंड ब्रह्मास्त्र का इसीलिए तो इंतजार कर रहे थे, पर उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी आने वाली है एंड अमेजिंग होने वाली है। सो लव एंड वॉर का पोस्टर क्या आपने देखा, क्या टीजर देखने में आप इंटरेस्टेड हो, और इन पोस्टर्स पर जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगा है उससे तो ये समझ आ रहा है कि कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। संजय लीला भंसाली कुछ बहुत ही अमेजिंग लेकर आने वाले हैं। सो फिलहाल इस बारे में जो है और बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਓਵਰ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

0: अगर मुझे एक फील गुड गाना जो है अभी के अभी अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करना होना तो वो ये वाला ही गाना होगा। जी वेलकम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, यूं तो आप लोगों को हर रोज आकर जो है मैं कोई नई मूवी रिकमेंड कर देती हूँ, लेकिन खुद मैं उन्हीं चार मूवीज पे वापस चली जाती हूँ देखने के लिए। लेकिन कल जो है मुझे खींच के जो है एक ऐसे टीवी के सामने बिठाया गया जिसमें बोला गया कि अब तुम्हारी वो घिसी पिटी चार मूवीज नहीं जिन्हें तुम रीवॉच करती रहती हो और बाकी सबको बताती रहती हो, आज हम तुम्हें कुछ नया दिखाने वाले। सो OTT पे जो है लगाई गई द हसल, हाँ जी 2019 की एक हॉलीवुड कॉमेडी मूवी है। हाँ, हसल सुन के मुझे भी ऐसा लगा था कि यार फिर एक्शन थ्रिलर दिखा देंगे हॉलीवुड का, लेकिन नहीं, ये जो है एक हॉलीवुड कॉमेडी मूवी है एन हैथवे और रेबल विल्सन की। एंड मतलब ये जो है बहुत फेमस एक नॉवल है उस पर बेस्ड है, एंड ये स्टोरी लाइन और प्लॉट जो है आपको अच्छी लगेगी अगर आपको लेडीज वर्सेस रिकी बेल और ऐसी बदमाश कंपनी ऐसी मूवीज अगर आपको अच्छी लगती है ना, सो ये मूवी आपको बहुत अमेजिंग लगने वाली है। एंड आपको हर वक्त जो है ऐसा लगता है कि अच्छा अब तो मूवी खत्म हो गई है, अब तो क्या ही होगा, ठीक है, लेकिन मूवी तभी जो है एक ऐसा ऐसा मोड ले लेती है कि आपको लगता है ओ ये बचा हुआ था अभी। बट अगर मैं इस मूवी के नेगेटिव्स की बात करूं तो इस मूवी में कुछ नया नहीं है, एंड जोक्स भी ना थोड़े से आपको ओवरडू से लगते हैं। अब देखो यार, बॉलीवुड में आपने सब कुछ देख लिया है तो कभी कभार हॉलीवुड में भी आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ नया क्यों नहीं लिख रहे। स्टीरियोटाइपिकल ह्यूमर है लेकिन कहीं ना कहीं एक कंफर्ट मूवी जो है उसकी तरह आपको फील होगा, ऐसा लगेगा कि यार ठीक है टाइम पास करने के लिए बढ़िया मूवी है। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मेरी तरफ से इसे 5 स्टार्स में से 3 स्टार्स में देना चाहूंगी, लेकिन एक बार जरूर देखी जा सकती है अगर आपको बॉलीवुड से हटके कुछ कॉमेडी देखना है तो ये देखिए। बाकी अगर आपकी कोई सजेशंस है सो आप मूवीज के वो मुझे भेज सकते हैं 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
2: लुलू फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक.
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए.
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी.
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलू हाइपरमार्केट.
3: लुलू, where the world comes to shop.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

कई बार ना कुछ चीजें हमारे आंखों के जस्ट सामने होती है लेकिन हमें नजर ही नहीं आती है, तभी मम्मी की डांट खाते हैं यार हम अक्सर। जी वेलकम 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, कई बार ना हमारे आंखों की चीजें इस आंखों के सामने चीजें होती हैं एंड हमें जो है नजर नहीं आ रही होती है, जैसे नेचर के दिए हुए कुछ अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन, मतलब धूप में, छाव में, शाम में, पेड़ पौधों में, हर चीज में ना एक कलर कॉम्बिनेशन नेचर ने हमें दे रखा है जो हम रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यू नो यूज करने में काफी कतराते हैं। मतलब कभी आपने जो है रस्ट ऑरेंज और यू नो बेबी ब्लू, इन दोनों कलर्स को साथ में पहनने का सोचा है, आपको लगेगा यार ये तो कितना कितना मतलब अजीब गोविंदा वाला जो है कॉम्बिनेशन है कलर, लेकिन नहीं, नेचर में अगर आप देखें तो इस टाइप की कलर कॉम्बिनेशन बहुत इजीली आपको मिलेंगे एंड जब आप आउटफिट में उसे करेक्ट वे में स्टाइल करेंगे तो वो बढ़िया भी लगेगा। सो आज कुछ ऐसे ही कलर कॉम्बिनेशन जो नेचर से इंस्पायर्ड हैं एंड हमें साथ में एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज की फैशन क्लास में। सो सबसे पहला कलर जो है वो होने वाला है रेड एंड पेस्टल ग्रीन, ये साथ में बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। अगर आप शुरुआत में थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसे इंडियन या जो थोड़े एथनिक कपड़े होते हैं ना उनके साथ ट्राई कीजिए, इन कॉम्बिनेशंस को अमेजिंग लगने वाला है। उसके बाद ऑफ वाइट और ट्री ग्रीन, ओ माय गॉड अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत लक्स लगता है। एंड उसके बाद आइस ब्लू जो है वो आप ऑरेंज के साथ जैसा मैंने कहा एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद पाइन ग्रीन एंड वाइट एक लग्जूरियस कॉम्बो है, सो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, एस्थेटिक लगता है। उसके बाद लेमन येलो एंड क्ले कलर जो होता है, मतलब थोड़ा सा ऑरेंजिश होता है, ये साथ में बहुत ही अमेजिंग लगता है। उसके बाद फ्रेंच रोज एंड पेस्टल ब्लू, ड्रीमी कॉम्बिनेशन है अगर आप एक ड्रेस और एक स्कार्फ के साथ इसे ट्राई करना चाहते हैं या एक शर्ट और यू नो पॉकेट स्क्वायर या टी शर्ट के साथ अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। सो ये कुछ कलर कॉम्बोज हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो विद अस।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

तो जी देखिए, आपको यहाँ से टाटा बाय बाय करके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब मैं जाऊंगी तभी तो कल वापस लौट कर आऊंगी लाइफ मस्त है शो पर। हाँ जी, आपकी कशिश हूँ मैं और आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे लाइफ मस्त है, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, सो टाटा बाय बाय मैं आपको कर रही हूँ। बस जाते जाते वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहो, पानी पीते रहो और यू नो, मुझे मिस करते रहो, गाड़ी भी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड रेडियो ऑलिव के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मैं बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios. Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Mornings and nights.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन 1 घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

गुड आफ्टरनून, यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। यस, कभी आपने नोटिस किया है वीकेंड खत्म होने का दुख असल में वीकेंड खत्म होने पर नहीं होता, बल्कि तब शुरू होता है जो वीकेंड अभी चल ही रहा होता है। और आज बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है मुझे। सैटरडे का दोपहर है, आप आराम से बैठे हो, अभी आप ड्राइव करके या तो अपने घर जा रहे हो या किसी काम से निकले हो, और शाम अभी बाकी है, रात भी बाकी है, लेकिन दिमाग में एक छोटा सा यू नो संडे का डर जो है वो बैठा हुआ है। कल मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने ऑफिस पे जाएगा वापस, सुबह से वही अलार्म, वही काम शुरू, और अचानक लगता है कि अरे यार वीकेंड तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था और हमने अपना मतलब सारा काम जो है वो वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। शायद हम सिर्फ काम से नहीं थकते, हम उस रूटीन की इमेजिनेशन से थक जाते हैं जिससे हमें अगले दिन वापस एंटर करना होता है। सो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर हम हर अच्छे पल को उसके ख़त्म होने के डर से जीना शुरू कर देंगे तो शायद हम उसे पूरी तरह से जी ही नहीं पाएंगे। सो छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो आई विल से कि आप कल के बारे में मत सोचिए, मतलब संडे के बारे में सोचिए ही मत, आज सैटरडे है, जो टाइम आपके पास है उसे रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आराम की सबसे बड़ी जरूरत टाइम की नहीं है, दिमाग को कल से थोड़ी देर की छुट्टी देने की है। सो यू टेल मी कि आपका वीकेंड यू नो कैसा रहा, और फ्राइडे को क्या किया आपने, आज आपके क्या प्लान्स हैं, सैटरडे इवनिंग अभी बाकी है, नाइट भी बाकी है, या फिर आप भी कल के डर से अभी से ही यू नो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई कल जाना है ऑफिस। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और ये है ऑलिव रिचार्ज।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Guys, this is Jonita Gandhi. Jonita Gandhi. Radio Olive, I'm the number one. You are listening to me on Radio Olive. Radio Olive. Jio Bindaas. Radio
2: Olive, I'm the number one. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Olive laga aur ho ja richa.
4: Olive recharge.
5: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindaas.
4: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: अजीब सी फीलिंग होती है, यू नो संडे जो है वो बहुत स्केरी लगता है. मतलब अभी संडे आया भी नहीं है और एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट टुमारो, कल ऑफिस जाना है, कल ऑफिस में मीटिंग्स हैं, अलार्म्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं. एक अजीब सी फीलिंग होती है. सो सैटरडे की शाम बाहर से देखे तो सब ठीक लगता है, छुट्टी का दिन है, चाय है, घर है, फैमिली है, आराम है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं दिमाग बोल रहा है कि यार कल संडे है और संडे कतर में ऑफकोर्स वर्किंग डे है, और बस मूड थोड़ा सा बदल जाता है. सो आजकल एक नाम भी यू नो दिया जाता है संडे स्कैरीज, क्योंकि यहाँ पर संडे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो जाता है. जैसे इंडिया में जब मंडे को वर्किंग डे स्टार्ट होता है तो हम मंडे ब्लूज़ कहते हैं, यानी आने वाले कामकाजी हफ्ते को लेकर थोड़ा सा डर लगता है. देखिए ना कितनी सारी चीज़ें हैं, हमने ये जॉब लेने के लिए कितनी मेहनत की है. अलार्म हमारा टाइम सेट करता है, मीटिंग हमारा टाइम सेट करती है, डेडलाइंस हमारा टाइम सेट करती है, मैसेजेस और कॉल्स हमारा अटेंशन तय करती है, और शायद इसी वजह से संडे इतना प्रीशियस लगता है, क्योंकि कुछ घंटे के लिए ऐसा लगता है कि यार इसी के लिए तो हमने इतनी मेहनत की थी ना. सो आप बस यही देखिए कि भाई आपने इसी दिन के लिए इतनी मेहनत की थी. फ्राइडे सैटरडे इज़ ऑल अबाउट यू नो योर वर्क, योर ग्रॉसरीज, बहुत सारी नई नई चीज़ें, दोस्त, ये वो, पर अब कल से वापस से काम पे जाना है. सो आई विल से कि आज का जो दिन है आपके पास सैटरडे बचा हुआ है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: Awesome. रेडियो ऑल ओवर पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Awesome.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

आपके साथ ऐसा होता है? मतलब जब भी आप खाना खा लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा आलस फील होता है, आपको लगता है कि नहीं यार ये टाइम में बात नहीं कर सकती अभी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑलिव रिचार्ज। इसीलिए ऑलिव रिचार्ज आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि आई नो दोपहर में बहुत आलस आता है। कभी कभी हम किसी कंट्री में रहते रहते उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उस शहर में हो रहे हर खूबसूरत चीज को देखना ही बंद कर देते हैं। सो आई विल से कि यहां पर मैं आपको यही बताने वाली हूं, क्योंकि देखिए अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि अगर मैं बात करूं कतर की, तो ये महीने से ना गर्मी कम होना स्टार्ट हो जाती है और मौसम बेटर होना स्टार्ट हो जाता है, बट स्टिल बाहर बहुत गर्मी है। तो हमें एंटरटेनमेंट का मतलब शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट हो जाता है ऑफ कोर्स इस मौसम में, लेकिन ऐसा नहीं है। आज कोई देख लीजिए तो यहाँ पर कटारा में यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका मूड थोड़ा सा अलग है तो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में DFI की कॉटन क्वीन की स्क्रीनिंग आज चल रही है। प्लस फैमिली के साथ कुछ हल्का फुल्का करना है तो मॉल ऑफ कतर में इंटरनेशनल आइसक्रीम शो चल रहा है जो कि 3rd October तक चलेगा। सो इंटरैक्टिव साइंस कैरेक्टर्स और ऑब्वियसली आइसक्रीम, इन दोनों को मिक्स करके कुछ बनाया गया है। यानी हर कंट्री में म्यूजिक भी है, सिनेमा भी है, आर्ट भी है, थोड़ा सा बचपन भी है, और शायद यही किसी भी कंट्री की सबसे बेस्ट यू नो एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो आई विल से कि मॉल और रेस्टोरेंट्स के अलावा भी अगर आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जा सकते हो। बाय द वे दिस इंटरनेशनल आइसक्रीम शो इज समथिंग डिफरेंट, यू नो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो मैं भी सोच रही थी जाने का। आप मुझे बताइए क्या आपने ऑलरेडी पहले कभी एक्सपीरियंस किया है या आप भी जाने का प्लान कर रहे हैं। सो हम अक्सर कहते हैं कि दोहा में गर्मी बहुत है और मॉल चले जाते हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, पर आई विल से कि अगर आप चाहते हो तो आपके पास और भी दूसरे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको बता दिए। सो यू कैन यू नो एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एंड आप मुझे बताइए कि आपने अपना फ्राइडे कैसे बिताया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून, नंबर सेम 1063, ये है ऑलिव रिचार्ज।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: सो एक ना अच्छी किताब की खूबसूरती ये होती है कि उसने आपको कितनी बातें सिखाई। कभी कभी अच्छी किताब वो होती है जिसे बंद करने के बाद भी आपका दिमाग खुला रहे। हम किताबें अक्सर दो तरह से पढ़ते हैं, या तो कुछ सीखने के लिए या फिर कहानी जानने के लिए। लेकिन कुछ किताबें तीसरी कैटेगरी में आती हैं, वो है वो हमें अपने बारे में कुछ सिखाती हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ऑफ रिचार्ज। कोई कैरेक्टर ना पढ़ते पढ़ते अचानक लगता है ये तो मैं ही हूँ, कोई एक सेंटेंस पढ़कर लगता है कि मैं बस बात को इतने सालों से महसूस कर रही थी लेकिन शब्द नहीं मिले। और शायद इसी वजह से कुछ किताबें हमारी फेवरेट नहीं होती, वो हमारी कंपेनियन बन जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही किताब दो लोगों के लिए दो अलग किताबें हो सकती हैं। जब आप 25 साल की उम्र में कोई किताब पढ़ोगे और 35 साल की उम्र में कोई किताब पढ़ोगे तो कहानी वही होगी, बस आप बदल चुके होगे। इसलिए शायद किताबें सिर्फ स्टोरी नहीं होती, किताबें एक तरह का मिरर भी होती हैं। सो आज ऑलिव रिचार्ज पर मेरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। ऐसी कौन सी किताब है जिसे पढ़कर आपको लगा कि इस किताब ने आपको समझा है? नाम याद है तो बताइए, और नंबर सेम 3311063। मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर,
2: ये गाना
3: पूरे देश को पगला दूंगा। अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो। नाम या दाम, नाम
4: मनी फॉलोज।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

सो आज ना हमारे पास एंटरटेनमेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए थोड़े दिन पहले चुंबक आया था नेटफ्लिक्स पर, तब मैंने आपको उसके रिव्यूज दिए थे। पूरा प्रॉपर 90s के वो पुराने जोक्स हैं उसमें, वही कैरेक्टर्स, वही सब चीजें। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल एवरी चार्ज। कल भाई एक बड़ी ही अच्छी मूवी आई परिणीति चोपड़ा की, विच इज शक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। फ्राइडे वाज लाइक कि यार कब आया कब गया पता ही नहीं चला। और आज हमारे पास एंटरटेनमेंट की कमी नहीं है, एक OTT खोलिए इतने ऑप्शंस हैं कि आधा घंटा तो यही डिसाइड करने में चला जाता है कि देखना क्या है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि आज हम सिर्फ ये नहीं चुनते कि यार कौन सी मूवी देखें, हम अपना मूड चुनते हैं। हमें कभी कॉमेडी देखने का मन करता है, कभी कुछ सिंपल, कभी कुछ थ्रिलर, और कभी कभी एक ऐसी फिल्म या सीरीज जो थोड़ी देर के लिए हमारी अपनी जिंदगी से हमें बाहर निकाल दे। सो इस वीकेंड की OTT लिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। डोंट बी शाय जैसे कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है, उसके बाद इंटेंस ड्रामा आपको दिखेगा, अगर आप चाहो तो हुंकार देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको ये नहीं बताने वाली कि ये देखिए ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने खुद ही अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के किस मोड में ऐसे कौन सी स्टोरी चुनते हो ये आप मुझे बताइए। मतलब आपको कब ऐसा लगता है कि यार आज कॉमेडी देखनी है, म्यूज़िक देखना है, या रोम कॉम कुछ देखना है, या फिर थ्रिलर देखना है। 3311106 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: Drishyam The Conclusion, starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawat and many more.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam The Conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Z Studios.
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
5: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
6: हाय, आई एम राजकुमार राव।
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
8: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: आजकल जब भी आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको अचानक ऐसा लगेगा जैसे पूरा इंटरनेट यू नो फैशन की बात कर रहा है, चाहे वो 80s का फैशन हो, 90s का फैशन हो, बड़े बड़े हेयर स्टाइल्स, स्ट्रेट लुक टोट्स, ठीक है, फिल्म कैमरा वाले वो ग्रेनी पिक्चर्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये पुरानी फोटोग्राफ्स नहीं है, ये AI ने बनाई है। आप जब यू नो खुद जाकर गूगल पर चेकआउट करोगे कि 80s कैसा दिखता था, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 80s वॉज नॉट लाइक दैट। ठीक है, नियॉन कलर्स थे 80s में, ठीक है, वो विंटेज फोटोग्राफी स्टाइल था वहाँ पे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं दिखता था बॉलीवुड 1980s में। और मुझे इस ट्रेंड की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है फैशन नहीं लगती, मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि जिस जनरेशन ने 80s देखा ही नहीं उसे 80s इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज। आज दोपहर में ही मेरे पास एक इन्विटेशन आया कि यू नो हम लोग एक गेट टुगेदर कर रहे हैं जिसका थीम है 80s, एंड मुझे लगा कि भाई मतलब ये कैसे कॉपी करना है। एंड फिर मैंने चेकआउट किया और मुझे पता चला कि बॉलीवुड 80s में कैसा लगता था, वो पोलका डॉट्स, बड़े बड़े हेयर बैंड्स, बड़े बड़े क्लासेस और हेयर स्टाइल, वो ही था मेन अट्रैक्शन ऑफ 80s। पुरानी फिल्मों का चार्म, फिल्म कैमरा की इम्परफेक्शंस, हैंड रिटन लेटर्स, स्लो म्यूजिक, और जब आप देखते हो ना ये सब चीज़ें तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअली 80s क्या है। और फैशन में भी यही होता है, ट्रेंड्स वापस आते रहते हैं। अब देखिए पोलका डॉट्स आज तक इन है, 80s, 90s या फिर अभी भी देख लीजिए, क्योंकि फैशन शायद सिर्फ कपड़ों का खेल तो है ही नहीं, फैशन ये बताता है कि हम किस टाइम को याद करना चाहते हैं। सो आई विल से कि 80s, 90s या 2000s, आप अगर कोई पार्टी में जाना चाहो तो कौन सी थीम आप लेना चाहेंगे? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ। साउंड्स अनबिलीवेबल बट इट्स रियल।
2: लुलु फैशन स्टोर का हाफ पे बैक इज बैक।
1: सिलेक्टेड रेडीमेड गार्मेंट्स, साड़ीज, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग्स और बेबी एक्सेसरीज पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का फ्री शॉपिंग वाउचर इंस्टेंटली पाइए।
2: यानी फैशन भी और रिवॉर्ड्स भी।
1: हाफ पे बैक, शॉप मोर, गेट रिवॉर्डेड इंस्टेंटली ओनली एट लुलु हाइपरमार्केट।
3: लुलु, where the world comes to show. Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge. Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas. Olive recharge.
5: This hour is brought to you by
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

कभी आपने सोचा है कि हम अपनी लाइफ में जीने से ज्यादा कभी कभी उसे एडिट करने लग जाते हैं। ये फोटो अच्छी नहीं आई, डिलीट। ये मैसेज थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल है, एडिट। इंस्टाग्राम पर ये डालूं कि वो डालूं, हर घर मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। घर अच्छा दिखना चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी भी वैसी दिखनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं, लेकिन असली जिंदगी में गलत फोटोज भी होते हैं, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस भी होते हैं, बुरा मतलब कभी कभी फैशन भी लगता है, बैड हेयर डेज भी होते हैं, और ऐसे डिसीजंस भी होते हैं जिनका हमें खुद नहीं पता कि सही था या गलत। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑल ऑफ रिचार्ज। और शायद जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है कि इसे इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह एडिट नहीं किया जा सकता। आप किसी कॉन्वर्सेशन को वापस डिलीट नहीं कर सकते, किसी एज को दोबारा नहीं जी सकते, और किसी इंसान से मिली हुई सीख को अपने पास्ट से रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन शायद ना हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी की कहानी सिर्फ उन चैप्टर्स से नहीं बनती जो हमें पसंद आए। मतलब कुछ गलत चैप्टर्स भी जरूरी होते हैं, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी जरूरी होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस भी जिन पर आज हम हंसते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जिंदगी कितनी परफेक्ट दिखती है, सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये जिंदगी सच में मेरी है, क्योंकि एडिटेड लाइफ खूबसूरत दिख सकती है लेकिन ऑथेंटिक लाइफ ही याद रहती है। सो आई विल से कि अगर आप भी ऐसा करते हैं ना कि ये परफेक्ट हो वो परफेक्ट हो, तो इतना परफेक्शन के पीछे मत भागिए, जो है बस उसी को मस्त इंजॉय कीजिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान और ये है ऑल ऑफ रिचार्ज।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
3: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
2: Olive recharge.
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

आज थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. अब आप रेडियो तो सुन ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई पुराना गाना सुनाई देगा ऑफकोर्स. सो उसके बाद आपने वो गाना कभी 2-4 साल पहले भी सुना होगा, लिरिक्स वही होंगे, म्यूजिक वही होगा, सिंगर की आवाज़ भी वही होगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि गाना आपको वैसा महसूस नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गाना नहीं बदला, आप बदल गए हैं. अब उस टाइम पे हो सकता है कि आप थोड़े से अलग सोच रखते हो, रोमांटिक सॉन्ग्स या लव स्टोरी आपको पसंद हो, और वही गाना सुनकर आपको किसी दोस्त की याद आ सकती है. कभी किसी ब्रेकअप सॉन्ग को हम यू नो कोई किसी सॉन्ग

कुछ देर के लिए अपने पुराने वर्जन से मिल लेना। सो आज ऑलिव रिचार्ज पर आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आपको अपना कोई पुराना वर्जन याद आ जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

एक ना बहुत फनी चीज है हमारी जिंदगी में, हम बाहर कितने भी कंपोज्ड रहें, ऑफिस में यस एब्सोल्युटली, मीटिंग में श्योर आई विल टेक केयर ऑफ इट, हम हमेशा यही बोलते हैं, और बाहर से बोलते हैं यार नो प्रॉब्लम आई विल टेक केयर ऑफ इट, और फिर घर का दरवाजा बंद हुआ और एक तरफ आपने अपने शूज उतारे, दूसरी तरफ बैग को रखा, और तीसरा जब आप अपनी पर्सनैलिटी में वापस आते हो कि आज किसी से बात ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि घर शायद वो एक जगह है जहां पर हमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता, बाहर हमें पोलाइट रहना पड़ता है, प्रोफेशनल होना पड़ता है, पेशेंट रहना पड़ता है, और हर सिचुएशन में अपना बेस्ट वर्जन दिखाना पड़ता है, लेकिन घर आकर हम बस हम होते हैं यार। अपने रूम में जाने के बाद ना अपनी रियलिटी हमें पता होती है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑल ओवर रिचार्ज, और शायद इसीलिए कभी कभी घर पर हमारा सबसे खराब मूड निकलता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि घर वालों की वैल्यू कम है, शायद उल्टा है, हम वहीं पर अपना ना गार्ड जो है उसे नीचे रखते हैं और हमें लगता है कि यहां मुझे समझ लिया जाएगा। सो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं परेशान होती हूं, या मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी देखा है, वो घर जाकर फोन पे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं अपने घर वालों से। सो आज एक मजेदार सवाल पूछती हूँ कि घर पहुंचने के बाद आपका पहला काम क्या होता है? चाय पीना, सोफे पर जाकर OTT स्टार्ट कर देना, या फिर सबसे पहले फोन लेकर दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना? बताइए, क्योंकि घर में एक जगह ऐसी जरूर होती है जहां इंसान दिन भर की सारी एक्टिंग उतार कर रख देता है। सो नंबर इज सेम 3311063। मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
3: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
5: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: एक सवाल पूछती हूँ, आपके घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपने बहुत एक्साइटमेंट के साथ खरीदी थी? शायद कोई कारपेट, कोई लैंप या कोई भी खूबसूरत सी चीज, और अब उनका काम सिर्फ एक ही है, वहीं पर मतलब एक कोने में रहना। जिम की मेंबरशिप, कॉफी की मशीन, फैंसी नोटबुक, कुक बुक, ऑनलाइन कोर्सेस, वो आउटफिट जो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए लिया था, वो स्पेशल ओकेजन अभी तक आया ही नहीं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग यू नो साइकोलॉजी है। कई बार हम चीज़ें खरीदते नहीं हैं, हम अपने फ्यूचर वर्जन को खरीदते हैं। जिम मेंबरशिप लेते हुए ना हम ये इमेजिन करते हैं कि अब मैं फिट रहूंगी। ब्यूटीफुल डायरी खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं कि अब मैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाऊंगी। किचन गैजेट्स खरीदते टाइम हमें लगता है कि अब मैं रोज खाना बनाऊंगी और अपना टाइम भी बचाऊंगी, और फिर जिंदगी अपनी स्पीड से चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉपिंग गलत है, बस कभी कभी हमें खुद से पूछना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे वो इंसान बनना है जो इस चीज का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दोनों में फर्क है यार। और शायद इसी वजह से हमारे घर में सामान नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अधूरे वर्जन ऑफ आर सेल्फ से भरा हुआ हमारा घर होता है। सो आज घर जाकर एक चीज देखिए जो आपने बड़े यू नो बहुत ही एनर्जी के साथ खरीदी थी, बहुत सोच समझ के खरीदी थी, और खुद से पूछिए कि मैंने इसे क्यों खरीदा था। हो सकता है आंसर बहुत मजेदार हो सकता है थोड़ा पर्सनल भी हो, पर आप पूछिएगा जरूर अपने आप से। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है ऑलिव रिचार्ज।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर। नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा, कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: लगा और हो जा रिचार्ज।
2: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
1: Olive Recharge.
3: This hour is brought to you by
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

सोचिए, कभी एक बिजनेस से जुड़ा हुआ छोटा सा काम करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस जाना पड़ता था, क्यू में इंतजार करना पड़ता था, फिर एक और डॉक्यूमेंट और फिर एक और सिग्नेचर, ऐसे करके टाइम लग जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे बिजनेस की दुनिया में ऑफिस जाने से ऐप खोलने तक का सफर जो है वो हम तय कर चुके हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है ऑलिव रिचार्ज। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने MOCI ऐप में कुछ नए डिजिटल सर्विसेज ऐड किए हैं, खासकर बिजनेस ओनर्स, ऑडिटर्स और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। इसमें 8 कॉमनली रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट्स और दूसरी चीजें हैं जो डिजिटली आपको मतलब 2 मिनट में मिल जाएंगी। सो इसमें कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस स्टेटस सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन रीड अबाउट इट। और एक और यूजफुल सर्विस है जिसमें आप यू नो एस्टेब्लिशमेंट की रिन्यूअल प्रोसेस के लिए ऐप में ही एस्टेब्लिशमेंट सेलेक्ट कर सकते हो और बाकी सारी आपको जो भी पेमेंट करनी है और पूरी जो भी डिजिटल प्रोसेस है वो आपको दिख जाएगी। सो ये ना एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है, मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी जिंदगी में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ना सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग या फूड डिलीवरी नहीं है। असल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब गवर्नमेंट सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेस भी हमारी डेली डिजिटल लाइफ का पार्ट बन जाती है, एंड यही तो बेस्ट पार्ट है। सो कोई कॉम्प्लिकेटेड काम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा भैया आपको बता देती हूँ कि अगली बार जब भी कोई कहे कि बिजनेस का काम है टाइम लगेगा, तो हो सकता है कि आपका जवाब हो पहले MOCI ऐप चेक कर लो, हो सकता है आपका काम बहुत आसान हो जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम, यस ऑफ कोर्स, ऑल ऑफ रिचार्ज।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग करो और शॉपिंग का आधा पैसा वापस पाओ. Sounds unbelievable, but it's real.
2: Lulu Fashion Store का Half Pay Back is back.
1: Selected ready-made garments, sarees, churidas, footwear, ladies bags और baby accessories पर 200 रियाल की शॉपिंग कीजिए और 100 रियाल का free shopping voucher instantly पाइए.
2: यानी fashion भी और rewards भी.
1: Half Pay Back, shop more. Get rewarded instantly only at Lulu Hypermarket.
3: Lulu, where the world comes to shop.

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

भाई ये एक मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन है। कभी कभी हमारा मन करता है कि आज किसी से बात नहीं करनी, कॉल्स नहीं, मैसेजेस नहीं, सोशल इंट्रैक्शन नहीं, बस अकेले रहना है। लेकिन उसी टाइम फोन हाथ में होता है और हम आराम से रील्स देख रहे होते हैं। यानी लोगों से बात नहीं करनी लेकिन इंटरनेट से बात बंद भी नहीं करनी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इन 106.3 FM। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑल एवरी चार्ज। भाई मेरे जाने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट शाम भी हो गई है। अब सैटरडे का एक कुछ ही टाइम बचा है जिसमें आप अपना वीकेंड इंजॉय कर सकते हैं। सो आई विल से कि इस कॉन्वर्सेशन को मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, बट आपसे बस यही कहूँगी कि देखिए थोड़ा सा टाइम बचा है, इसे अच्छे से स्पेंड कीजिए। अगर आप ग्रॉसरी अभी भी पेंडिंग है तो उसे ले आइए, अगर आप ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं तो मस्त अच्छे से डिनर इन्जॉय करके घर लौट कर आइए, और कल से वापस काम पर तो जाना ही है। सो आई विल से कि यहाँ पर हम कितना भी कह लें कि यार वीकेंड की याद बहुत आती है, पर संडे आते ही ना अलग एक्साइटमेंट होता है। ऑफिस जाना है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना है, और हर कोई, मतलब मैंने जितने भी लोगों को कतर में देखा है, एवरीबॉडी इज़ लाइक यार फ्राइडे और सैटरडे के बाद संडे वापस ऑफिस जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है सुबह सुबह उठने में, पर ऑफिस का भी अपना एक अलग मज़ा है। सो तैयारी कीजिए कल की, सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM सुपर हिट गानों के साथ। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट
2: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए
3: मुझे जस्टिस नहीं बदला चाहिए
1: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन तबू श्रिया सरन जयदीप अलावत एंड मेनी मोर
4: इस बार खतरा कब कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है
1: द एंड वी हैव बीन वेटिंग फॉर दृश्यम द कंक्लूजन इन सिनेमा 2nd अक्टूबर
4: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है आखिरी हिस्सा बाकी है
1: Overseas release by Zee Studios.
5: फॉर्मल शर्ट लेने का प्लान है और चाहिए प्रीमियम ब्रांड
6: तो नेस्टो गराफा में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर दो शर्ट सिर्फ 59 रियाल में या चार शर्ट जस्ट 99 रियाल में और हाँ जहाँ एक शर्ट के लिए आपको 59 रियाल देना पड़ता है वहीं चार शर्ट्स अब सिर्फ 99 रियाल में ओनली विद गराफा शॉपिंग डेज
5: तो इस वीकेंड अकेले मत जाना अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाना नेस्टो हाइपरमार्केट गराफा

हाँ जी मैं क्या जी सुनियो किदा दी की हाल चाल जब तक बैकग्राउंड म्यूजिक ना हो फील नहीं आती सिमरन कौर के साथ जबरदस्त इवनिंग जो है वो शुरू हो चुका है और वीकेंड अपना जा चुका है तो और बताओ क्या हाल चाल है आपकी हैप्पी सैटरडे सिमरन कौर आ चुकी है जबरदस्त इवनिंग्स भी शुरू हो चुका है आप लोग किधर जा रहे हो क्या कर रहे हो कैसा रहा आपका आज का दिन नंबर वही है यार 3311063 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ आपका वीकेंड कैसा रहा उसके बारे में वापस लौट के आपसे पूछते हैं सुंदरी रेडियो ऑलिव कौर कहते रहिए जियो बिंदास We'll be right back.

0: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, बेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
3: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हाँ जी मैं गली सोनियो की दादी की हालचाल सिमरन कौर आपके साथ। और कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? क्या किया आपने थर्सडे नाइट, क्या किया आपने फ्राइडे पूरा दिन? और अगर आज आपकी छुट्टी थी तो आज क्या किया आपने? अगर आज की आपकी छुट्टी नहीं थी तो आज आपने ऑफिस का काम ही किया होगा। सो यार मेरा वीकेंड कैसा रहा? मेरा वीकेंड मस्त रहा यार, बढ़िया मस्त। मैंने एकदम नींद ली और बिग बॉस के एपिसोड जो थे वो बहुत पूरे किए, क्योंकि मैं मेरे दो एपिसोड जो थे वो छूट गए थे, तो वीकेंड में मैंने उसको एकदम फिनिश कर लिया। भाई अलग लेवल का चस्का जो है बिग बॉस का लग चुका है। नाना करते भी यार मन करता कि अरे देखें यार कि क्या हुआ होगा। दो उसमें जो कलेशबाजी चलती है, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा चलता है, ऐसा लगता है क्या ही चल रहा है यार लाइफ में। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से तो अच्छा ही चल रहा है यार बिग बॉस की जिंदगी में। सिमरन कौर याव के साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں قطر کا نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو اولیو 106.3 FM.
2: بنداس بھائی یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے یار، शावर जो है स्किप कर रहे हैं, ड्यूडरेंट जो है वो नहीं लगा रहे हैं, और ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो कि उन्होंने पहले पहने हुए हैं, मतलब बिना धुले वाले कपड़े पहन रहे हैं। उनका मानना यह है कि नेचुरल जो बॉडी की उनकी स्मेल है वो उनके पार्टनर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। भाई साहब ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है यार कैसे, मतलब आप इतना बुरा स्मेल कर रहे हो उसको आप नेचुरल स्मेल बोल रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आपका पार्टनर जो है इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ओ माई गॉड। वैसे खैर इस ट्रेंड का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन उतना बोलूंगी कि गर्मी जो है गर्मी के टाइम पे परफ्यूम ड्यूडरेंट यूज करना जरूरी होता है, लेकिन अब सर्दी आ रही है, मौसम भी अच्छा हो जाएगा, ऐसे टाइम पे भी अपने बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेगुलर शावर और ड्यूडरेंट परफ्यूम लगाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप महकते रहो यार, जिंदगी भी बढ़िया चलेगी। सिमरन कौर यादव के साथ ही हो बिंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। स्टार स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: मेरे बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावर एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

पे मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और सेकंड पे मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा जो पार्किंग था वो इशू आ गया था। सो ड्राइविंग लाइसेंस मिलना कतर में मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छी बात है यार, रोड पे आपको गाड़ी चलानी, किसी की लाइफ का सवाल होता है यार, तो जितना टाइम लगे उतना ले लो, लेकिन आपको परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आई एम श्योर अभी मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का टाइम जो है वो याद आ गया होगा। सो इसलिए मैं आपको एक चीज और याद दिला रही हूँ जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है या फिर आधी अधूरी जानकारी, तो उनको बता दूं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप कतर में गाड़ी ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो 50,000 कतरी रियाल तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है, अप टू 3 years की जेल भी आपको हो सकती है। सो मेक श्योर कि आप रिस्पॉन्सिबिली जो है वो ड्राइव करें अपने वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

आज दिन में तो भाई टेम्परेचर जो था वो ऊपर पहुंच गया था काफी।

हो गया दादी की हाल चाल सतरियाकाल सिमरन कौर आपके साथ। तो आज दिन में टेम्परेचर जो था ना वो फील्स लाइक 48 डिग्री सेल्सियस हो गया था जब टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस था। सो या आज का मिनिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी की बात करें तो अभी 38% है और रात तक 11 बजे तक होते होते ह्यूमिडिटी जो है 65% तक पहुंच जाएगी 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। सो या ह्यूमिडिटी एक बार चले जाए मौसम तो फिर इसमें एक बार मस्ती है। लेकिन आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, अर्ली मॉर्निंग उठी थी, तो बाहर निकल के एक ऐसा एकदम से धूप वाला भबका सा नहीं पड़ा था, नॉर्मल लग रहा था। तो या नॉर्मल हो रही है चीजें धीरे धीरे। सिमरन गौरे आपके साथ, बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान। तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ।
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: यार कभी स्माइल भी कर लिया करो, इट्स ओके, किसी का बिल नहीं आता।
1: Gen Z decoded.
2: ऐसा ही क्या?
1: दा, दा, दा.
0: बिल्कुल ऐसा ही है। आपके साथ देखो यार, हम सब की लाइफ में कोई ना कोई क्रश जो है वो रहता है। क्रश एक ऐसी चीज है कि ये बदलता भी रहता है, राइट? सो क्रश के लिए आपका जो है भावुक होना, उसके लिए बहुत सारी चीजें करना, ये कुछ जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम लोग जो है बेवकूफी में करते हैं। तो जो इंसान अपने जिसके ऊपर क्रश होता है उसके लिए इतना ज्यादा कुछ करता है, उसको जेंजी लिंगो में बोलते हैं सिंप, SIMP। सो यार आपके क्रश की याद आ गई क्या आपको? भाई मेरा भी क्रश था यार, बहुत जबरदस्त वाला। मैंने अपने प्रोफेसर के बारे में तो आपको बताया हुआ है यार। शादी वाली होगी, बच्चे बच्चे हैं यार अब तो उसके। खैर कोई बात नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को, कहते रहिए जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: मेरे को इतना कंफ्यूजन हो रहा है ना ये सोशल मीडिया देखकर।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: वायरल ये बात, मतलब सोशल मीडिया पे ये एआई के कारण देखकर। एनिमेटेड पंजाबी लड़कियां रहती हैं तो वो एक पिज्जा लेती हैं और मिट्टी में उसको डाल देती हैं और पिज्जा का पेड़ उगा देती हैं। अब पिज्जा का पेड़ उगता है, पत्तों के साथ साथ कितने सारे पिज्जा जो है वो उस पेड़ पे लग जाते हैं और चीज एकदम मेल्ट होके गिर रहा होता है। लाइक बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये चल क्या रहा है। एआई भी लाइक मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे यार सुंदरी रेडियो ऑलिव कर के दे रही है जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening make you drive golden with biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: देखो आप हमारे दोस्त हम आपके दोस्त हैं, आपको हमसे बहुत सारा प्यार है, हमको आपसे बहुत सारा प्यार है। लेकिन अगर आपको हमसे बहुत सारा प्यार है तो एक काम करो, अपना मोबाइल दिखाओ। अरे मतलब मैं नहीं देखने वाली, अपने मोबाइल को देखो, चलो उसके अंदर रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत गलत बात है, अभी कभी रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अगर आपके फोन में रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन, आए हाय क्या बात है यार, बड़े क्यूट हो आप। चलो रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का मतलब यह है कि 24/7 जब भी आपका यू नो रेडियो ऑलिव को सुनने का, बॉलीवुड म्यूजिक को सुनने का, हमारे शोज को सुनने का मन करे, आप जो है वो सुन सकते हैं, है ना। उसमें हमारी एप्लीकेशन में और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, यू नो नेपाली रेडियो भी आप सुन सकते हो, श्रीलंकन रेडियो भी आप सुन सकते हो, मलयालम रेडियो भी आप सुन सकते हो। सो या बहुत सारी ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। एंड olive.qa अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो तो पॉडकास्ट है, इंटरव्यूज है, इवेंट्स की सारी जानकारी है, कतर से रिलेटेड न्यूज है, हमारी टीम है, सो वहां पे भी ऑनलाइन आप हमें सुन सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमें यू नो सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सिमरन गौरे आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। स्टूडियो 18 एंड पेनोरमा स्टूडियोस प्रोडक्शन प्रेजेंट।
1: बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
2: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
0: दृश्यम द कंक्लूजन स्टारिंग अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, जयदीप अलावत एंड मेनी मोर।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है।
0: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
3: क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा बाकी है।
0: Overseas release by Zee Studios.

सो आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है दिल चाहता है। फरहान अख्तर ने जब ये फिल्म जो थी वो लिखी थी वो अक्षय खन्ना को एज ए आकाश सोच के लिखी थी, ऋतिक रोशन को एज ए सिद्धार्थ सोच के लिखी थी और सैफ अली खान को एज ए समीर सोच के लिखी थी, लेकिन ऋतिक रोशन ने इस रोल को करने से मना कर दिया। फिर ये रोल अभिषेक बच्चन के पास गया, अभिषेक बच्चन ने इस रोल को करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने फाइनली आमिर खान को अप्रोच किया। सोया सैफ अली खान ने शुरुआत में इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था और बोले थे कि मैं इस फिल्म की लेंथ जो है बहुत ज्यादा है और मैं इसमें काम नहीं कर सकता। फिर डिंपल कपाड़िया और जावेद अख्तर ने उनको बोला था कि रिकंसिडर करो अपने डिसीजन को, ये फिल्म अच्छी है, दिस एंड दैट। फिर दैट्स हाउ ये जो कास्टिंग हुई फिल्म की और ये फिल्म जो थी वो कितनी देर में बनी, इस फिल्म से जुड़ी और भी बातें हैं जो कि मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सिमरन कौर आपके साथ, चाहिए बिंदास।

0: ट्रैक पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: चाहता है, इसी फिल्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपका दिल चाहता है लाइफ में वही करो यार। आपके साथ दिल चाहता है फिल्म के बाद ही रोड ट्रिप्स जो थी ना गोवा की तरफ, उसका जो था वो ट्रेंड चला दोस्तों का। फिर आमिर खान के स्टाइल को, उनके हेयर स्टाइल को, उनकी दाढ़ी के स्टाइल को बहुत ज्यादा यू नो कॉपी किया गया, बहुत सारे यंगस्टर्स ने उसको कॉपी किया। लेकिन अगर इस फिल्म की शूटिंग की बात करें सिडनी, बॉम्बे एंड गोवा, ये तीनों लोकेशन की शूटिंग जो थी 108 दिन में एकदम राइट टाइम पे जो थी वो पूरी कर ली थी। लेकिन फरहान अख्तर ने इसकी स्क्रिप्ट लिखनी जो थी वो 1998 में जो थी वो स्टार्ट की, और दिल चाहता है ने तो कमाल किया था। और आज तक भी जब हम दोस्त लोग बैठते हैं ना तो दिल चाहता है फिल्म को लगा लेते हैं यार। सिमरन कौर याव के साथ जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
4: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: फिर लाइफ में कभी यूं भी हुआ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है। इंसान जीवन में सबको जानने के बाद एकांत चुनता है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आपको सबसे मिलना, सबसे बात करना, हर कोई दोस्त है, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जिंदगी को, लोगों को इतना ज्यादा जान लेते हो कि आपको जो है ना फिर अकेले रहना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि लाइफ में अकेले रहना है, लेकिन अकेले रहना भी कुछ गलत नहीं है। अगर आपका जी जो है वो बाकी लोगों में नहीं लग रहा है और बाकी लोग आपके हिसाब से आपको नहीं लग रहे हैं, आपको मीन लग रहे हैं, या फिर जितना आप किसी का कर रहे हो वो आपका नहीं कर रहे हैं, तो अकेले रहना, एकांत में रहना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है यार। लेकिन अगर आपके आसपास अच्छे लोग हैं जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और आपके लिए वो लॉयल हैं, सो बहुत बढ़िया है। ज़रूरी नहीं कि झुंड हो साथ में लेके चले, एक दो लोग आपकी ज़िंदगी में अगर हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अकेले रहते हैं, तो अकेले रहना भी कोई बुरा नहीं है यार। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास, वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली हूँ।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

चलो फिर दोस्तों, अब नेम गेम खेलने वाले अपना अपना नाम टाइप कर लो। सिमरन गौरे आपके साथ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं और आप वो सुन लो, तो आपको अभी के अभी मुझे अपना नाम जो है वो लिख के बताना होगा। सो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेज दो। नो हाय नो हेलो। चलिए अब मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। अबरार, नजीमुल्ला, मोहम्मद अजीज, जिशान जी, सबीहा जी, फैजल जी, खाजा जी, थैंक यू सो मच, सोना जी, थैंक यू सो मच, अबरार जी, थैंक यू सो मच, गुलाम जी, थैंक यू सो मच, मुकेश जी, थैंक यू सो मच, सतीश जी, थैंक यू सो मच, खान जी, थैंक यू सो मच, श्रुति जी, थैंक यू सो मच, सुधा जी, थैंक यू सो मच, राइसा जी, थैंक यू सो मच, अलीसा जी, थैंक यू सो मच, संजीदा जी, थैंक यू सो मच, मलिक फारूक जी, थैंक यू सो मच, दीपक जी, थैंक यू सो मच, मुबीन अहमद जी, हेलो मत लिखो दोस्त, अपना नाम लिखो, हरीश जी, थैंक यू सो मच, लावण्या जी, थैंक यू सो मच, इस्माइल जी, थैंक यू सो मच, वसीफ जी, थैंक यू सो मच, नबीन जी, थैंक यू सो मच, इद्रीस जी, थैंक यू सो मच, अहमद जी, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों ने मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी साथ में बनाओ।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत.
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा. कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी. सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा।
3: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: कंटेंट जो है ना एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है। कुछ लोग जो है नींद को प्रायोरिटाइज ही नहीं करना चाहते और कुछ आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी नींद को बहुत बड़ा इश्यू बना देते हैं। ये तो सोती रहती है, अरे इसको तो नींद प्यारी है। भाई नींद प्यारी होनी चाहिए, लाइफ में अगर फंक्शन करना है ना तो नींद जो है वो अच्छी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं डिकोटा जॉनसन के बारे में पढ़ रही थी। डिकोटा जो है वो कहती है कि भाई नंबर वन प्रायोरिटी है उनकी लाइफ में 10 घंटे या उससे थोड़ी नींद कम लेना। कहती है कि इजिली वो 14 घंटे की नींद भी ले सकती है, लेकिन नींद जो है ना वो प्रायोरिटी है उनकी लाइफ की, जो कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है यार। तो अगर आप अपनी जिंदगी में जो है वो सोने को इग्नोर कर रहे हैं और अगले दिन ऐसे लाल आंखें लेके घूम रहे हैं और जॉम्बी की तरह ऑफिस में घूम रहे हैं जहां पे आपको ब्रेन फॉग हो रहा है, तो वो गलत हो रहा है आपके साथ। अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए, शट डाउन करिए अपनी बॉडी को और उसके बाद जो है वो लाइफ में चीजें करिए। स्लीप डिप्राइव जो जब आप रहते हो ना तो आपको कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाते हो यार लाइफ में। सिमरन गौर आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं. अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
3: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

एक बहुत ही क्यूट वीडियो जो है ना वो वायरल हो रही है यार। जो कि हॉस्पिटल में जिसकी डिलीवरी होने वाली है, लेकिन डिलीवरी से पहले वो अपने चेहरे पे बहुत अच्छे वाला मेकअप जो है वो कर रही है। सो उसका ये कहना है कि भाई उसका बच्चा उसको पहली बार देखेगा तो उसकी मम्मी जो है वो गलत नहीं दिखनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो सही दिखना चाहिए। इसकी मम्मी एकदम मेकअप करेगी तो उसकी बच्चे को ये लगना चाहिए कि उसकी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल है यार, कितनी क्यूट वीडियो है यार ये, मतलब क्या ही बोलूं यार। सिमरन कौर है आपके साथ, मैं यहाँ जी चियो बिंदास। खुश रहो यार, लाइफ में जिस तरीके से भी आपको खुशी मिलती है ना, बस वो करो। दुनिया की सोच दी है उनके बारे, तुसी छड़ दियो यार, दुनिया तो सोचूगी यार।

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

दोस्तों, अब सिमरन कौर के यहाँ से गलती माने का टाइम आ चुका है। मुलाकात, बस ओवर थिंकिंग मत करिएगा, खुश रहिएगा यार, और दूजे ने भी खुश रखने की कोशिश करो यार। एंड लोगों को जो है वो खुश रखने का रीजन भी दो। हम बहुत सारे लोगों को बोल देते ना यार खुश रहो यार, तो ठीक रहे यार, तो ठीक रखने का रीजन भी दो। एंड खाने बिंदर ऐश कर दे, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सगिलो।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जिया बिंदास रेडियो ओलिव।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive.

Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: बनके
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।